कली बैठी हैं मैं लेके आसार, एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना।

0: आज फिर वो एक जिहड़ी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। दिलशाद अली जी थोड़ा निघा स्वागत है।
1: दोस्तों दुआबा रेडियो दे इस खास प्रोग्राम काव दरबार दे विच शमूलियत करने वाले मेरे सारे शायर दोस्त भैन भरावां दा मैं तहे दिल तो शुक्रिया और स्वागत करदा जी। दिलशाद अली मेरे वालों सारे नूं बहुत प्यार भरी आदाब सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। ते दोस्तों मैं इस गुलदस्ते दे विच इस प्रोग्राम दे विच एक सब तो पहला हरिऊ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हरबंस हरिऊ साहब का और जिन्हां ने मैं इस महफिल दे विच शामिल होने का सुभाग बख्शिया और मैडम सुरिंदर भोगल जी उन्हां दा मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ क्योंकि उन्होंने हरबंस हरिऊ साहब और मेरी मुलाकात करवाई। शुरुआत दे विच ही मैं उन्हां दा सारे दोस्त भैन भरावां दा शुक्रिया अदा करदा। ते इस महफिल दे विच एक गजल दे कुछ शेर थोड़े सामने मैं चाहांगा कि मैं नजर करां थोड़े दोस्तों ऐदा लिखिया के तिड़क जे रिश्ता कच वांगरा साहां नालों नेड़े आके तिड़क जे रिश्ता कच वांगरा साहां नालों नेड़े आके गीत जुदाइयां देगा लेना दूर रह के ए चंगा है। तिड़क जे रिश्ता कच वांगरा साहां नालों नेड़े आके गीत जुदाइयां देगा लेना दूर रह के ए चंगा है। करना उल्लू सीधा धर्म का नां लेके करना उल्लू सीधा धर्म का नां लेके ओए वड्डिया सियासतदाना अधर्मी तेरे नालों चंगा है। करना उल्लू सीधा धर्म का नां लेके वड्डिया सियासतदाना अधर्मी तेरे नालों चंगा है। अगे लिखा दोस्तों के विच विदेशां पौंड ते डालर गिणन नालों विच विदेशां पौंड ते डालर गिणन नालों अपने देश च रह के ए ठोलू गिणने चंगा है। विच विदेशां पौंड ते डालर गिणन नालों अपने देश च रह के ए ठोलू गिणने चंगा है। एक होर शेर दोस्तों मैं पेश करदा थोड़ी पेश नजर के रफल चलाउणी किसी दे मोढे ते धर के रफल चलाउणी किसी दे मोढे ते धर के ऐसी सूरम गति दे नालों डुब के मरना चंगा है। जे रफल चलाउणी किसी दे मोढे ते धर के ऐसी सूरम गति नालों फिर डुब के मरना चंगा है। एक आखरी शेर दोस्तों गजल दा कहिंदा रज के भी दिलशाद नीत रखे भुखियां वाली रज के भी दिलशाद नीत रखे भुखियां वाली फिर तेरे नालों ता कुत्ता यारा चंगा है। रज के भी जे दिलशाद नीत रखे भुखियां वाली फिर तेरे नालों ता कुत्ता यारा चंगा है। तिड़क जे रिश्ता कच वांगरा साहां नालों नेड़े आके गीत जुदाइयां देगा लेना दूर रह के ए चंगा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों बा उम्मीद के थोनू ये शेर पसंद आए होंगे। मैं एक बार फिर सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा जी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।
0: दिलशाद अली जी तो बाद हुण मैं तलवाड़ा तो पत्रकारा शायरा कहानीकारा हुण राधा काफर नूं सदा दिना वो आन ते अपनी रचना लेके हाजिर होण। हुण राधा काफर जी साडी कामे फिलां दे विच पहलां आउंदे रहिंदे ने ते अज फिर वो साडी कामे फिल दे विच आए ने ते साडी कामे फिल नूं चार चन ला रहे ने। हुण राधा काफर जी थोड़ा स्वागत है।
2: नमस्कार सारे स्रोतियों नूं जय हिंद। मेरी अज दी कविता दा नाम है हा दा नारा। हा दा नारा हाकमा तू अन्नदाते नाल जबर कीता हाकमा तू अन्नदाते नाल जबर कीता असी हा दा नारा मारिया है असी हा दा नारा मारिया है दस तू जुलम करन वेले रता भी क्यों ना विचारिया है दस तू जुलम करन वेले रता भी क्यों ना विचारिया है दस दे ओ बुझ दिला दस दे ओ बुझ दिला तेरा कदों किथे ना सरिया वे दस दे ओ बुझ

एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

मैं कुछ नगने सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे ना मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नू समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नू समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसी हुणे ही कुलवंत सिंह सैदुक जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लै के हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसी पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसी नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलिकां नू हंजुआं दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करके मैनू याद, बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा। किद्दां हिजर दे दाग, किद्दां हिजर दे दाग, तोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद,

किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के सर्वगार का खाब।

0: वाह वाह वाह, वो वादा था, क्या बता, बहुत खूब जी,
1: जो
0: बहुत खूब।
1: कहा था तुमने के कर जाऊंगा
0: जी,
1: जो कहा था तुमने के कर जाऊंगा, जो कहा था तुमने मैं वापस आऊंगा,
0: वापस आऊंगा, कमाल।
1: भारत भाई वास्ते मेरी स्पेशल लाइना भी एक फिल्म है, मैं वापस आऊंगा, दलजीत दी ते तुसीं कदे देखियो, बाकी सारा मैसेज ओहदे च आ जाऊगा थोनू
0: जी।
1: ओ बुजुर्ग पाकिस्तान दा प्यार हुंदा ओहदा, ते मान लो आदे पोतिया आला हो जांदा, ते जदों आखरी साह तक भी ओही गल, जदों ओह मान लो प्याह हुंदा ओहदे ते होस्पिटल दे विच, ते हुण मैं हुण की दसां बाबे, ओह हुण
0: छोटी
1: जी गल होर मेरी सुन लो, फिर हुण मैं कल जिवें कहिंदा सी जस्सी भाई, कहिंदा मैं दो मिनट लाने, कहिंदा तेरे दो मिनट दा पता सानू, अद्धा घंटा पूरा लाएगा
0: जी।
1: आलो मैं छोटे जी बस गल करके खत्म करदा
0: जी।
1: हंजुआं दे विच गम नू पाके पीना सिख लिया,

अती रात तक करना आंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्रो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तों आने, तेरे केड़ा छत तों आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तों आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणक आबरू खोण नी देनी, अणक आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज की

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: जोरावर वीर नू, ओ फतेह सिंह आखे जोरावर वीर नू, दादी मां ने दित्ती आखरी ये सिखिया, मंगनी ना कदे रहम वाली पिखिया, डाढे दुख देवे पावे ओ शरीर नू, फतेह सिंह आखे जोरावर वीर नू, फतेह सिंह आखे जोरावर वीर नू, छोटा पावे मैं हां तैथों पहला जावांगा, छोटा पावे मैं हां तैथों पहला जावांगा, मौत चंदरी नू हस गाले लावांगा, ओ मिलना है दादे तेग तनी वीर नू, मिलना है दादे तेग तनी वीर नू, फतेह सिंह आखे जोरा वर वीर नू, फतेह सिंह आखे जोरा वर वीर नू, फतेह सिंह आखे जोरा वर वीर नू।
1: कुलवंत सिंह सैदो की जी तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा हां पटियाला दे विच वसदी शायरा किरण सिंगला जी नू। किरण सिंगला जी जिहड़ी आ जमन लाल शोगल जी दी रचना जिहड़ी आ उस नू लै के हाजिर हो रहे ने, जिहड़ी कि छोटे साहिबजादियां दी शहादत नाल संबंधित है। किरण सिंगला जी दा दुआबा रेडियो दी प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। किरण सिंगला जी, जी आया।
2: हैलो, हैलो जी, मैं किरण सिंगला पटियाले तो एक अपने लालां दी शहीदी बारे कविता पेश कर रही हूँ जी। लिखी हुई शुगल जी ने है, तो अक्सर मैं छोटी जदों हुंदी सी चौथी पंजवीं च तो असी एक गुनगुनाते होंगे सी मूँह च, तो वो मैं तुहानू सुना रही हूँ जी।

0: हर पीस सफरीतों वादे, उन्हां दा दोस्त, उन्हां दा हमसफर ते उन्हां दे दादा जी दियां रचनावां गाउण वाला जिला है शेरपुर दे शहर गढ़दीवाला दा गायक रिंकू शाह दीवाना। रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ दा मालिक है, ते इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है, उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है। ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विच उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है, उस दे नाल ओ श्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना भी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी, थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल। जनाब चरण सिंह सफरी, पंजाब दे उगे शायर, जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाबी मां बोली दी झोली पाए और सिखी दी सेवा कीती अपनी कलम राही, उन्हां दी एक रचना, एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हां।